हरिकेन पैसा वालिया ना छूटे नहीं ना हमसे लगाए। You know we got a bus back that one right?